0: 92.7 FM का ज्ञान दे और सनी 93.7 FM के डॉन एवी का 38 minutes after 6 o'clock टाइम चक ब्रांड यू बाय प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस अंगालस फैमिली मगदा मगदा को बाग पो मरामी मरामी सलाम चाहिए पाई किने ताते निकोलस गुड मॉर्निंग हाँ चांग सीमा भी नहीं मरामी मरामी सलाम चाहिए पाई किने या गुड मॉर्निंग सेंयों बोंग फैमिलिया मगदा का परंगा इसे बेंटीन बोर्गस दर पिलार ही तो वाव थैंक यू हाँ सीना ओफेलिया रिस्टोर मगदा का प्रॉमिस लैंड मगसंदी गुड मॉर्निंग मरामी मरामी टीम वाई पो सेंयों पदायो न पाग पमीनो दिहांग दपीता Hoy! Ito mga taga-bonbon, kabino! Yan, magandang umaga rin. Maraming salamat po sa inyo, ha? Sige lang, padayon sa pangape. Kabulog pangape sa oras na ito. Another break is in queue. Magbabalik tayo. Siyempre, mamaya-may ng konti lang. Magdodron na tayo, ha? Sa ating The Price is Rise Overload. Kaya naman, sweetheart! Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang, sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is...
8: 92.7. This is Heart 92.7.
9: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.